नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में

0: पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाबराव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर

0: पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के 1-1 गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूजोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गस्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अहम सुबह फोन कॉल में मुलाकात सके। हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग, कनाव बिर बनो।
1: गुड मॉर्निंग सर। सर ए सिंजो में नि थाउजेंड लगा रे या कोई जम नि बेदिता को बे सर
0: नि बेदिता बुतार हम लोग से रिंग असी गले ब फर बहुम सुबह कॉल नि कर बिसे तावी गने हाबियो
1: सर लंबा गी सही जो खंदी ग बाई ता हजर ताजे हो रे लंबा गी कुछ पुरान में छक पद
0: खंदी असी निमित के याम न सान ब आउ असी तरह मरी नि पान ब निमित के याम न सान ब इसे
1: खंदी खंदी हि मय एक कॉपी ने सरांग ब तरह मरी नि पान ब था जें ग अदु इसे जो इन ताजे रे सरांग असी सान न
0: होय होय गसी लेब फब हाइब तारे ममांग दसु फोन कॉल तौबीरप मरम अपांगसिंग ना खनखिद्री ngasi lebo phaba nibedi ta gi namuk da thajage ado isagi khonjel da mati amtang ngang biram gadra hoi ngang biung ngang bi hoi hoi
1: taram mari panba chekum amma payau ta ba nangi nanada kayam kun khanam da ni
0: उधोंना फजन सुंगांग बिख्रे सेखुदोल तमजरी पुना तामिनरसे
1: होय सर।

0: हेलो। लाइव थीबनी फोन नंबर डिस्कनेक्ट ओइख्रे 9362327095 नंबर इसी द लेप्तना कॉल तो बिरो खुदा बीबी इसे खन बिरो हेलो हेलो फोन कॉल अमसु रिसीव तौर लाइक थीबनी मथंगी मसी मुक यमीनरसी हेलो हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग अदोमु तराम लोकसेरी कना ओइबिरबनो
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: कना ओइबिरबनो
1: बमचा रंगों कसाडगी।
0: कसाडगी बमचा हाइबिबको?
1: मांगे
0: बमचाबु तराम लोकसेरी ममांगदसु मरुप अनिगी फोन कॉल तत्खरब मतुंगदा बमचा थेंगजबनी। करी फिल्मगी इसै ताबिनिगी हाइबियो?
1: मसिदि अदिब फिल्म दं ताजेके फुजि ओलांग थाय वामुदु सु फिल्म दा नबतंद्र समाग जमुरा गचप लागलो जेसिया बिसिदुम ताजेके तो
0: सोरांगि मि यामना नुंगसि मपाव पुरब इसे एमसु खनबिरगली को। करी तौबिरमन हजिक्सिबो?
1: ड्यूटी चेके तो होय
0: होय होय। करी डिपार्टमेंट दे लेबिबगे?
1: आसाम पुलिस दे लेबिनि।
0: होय होय। अदुदि मफम दुदा कंगला चैनल गी रेडियो सेट होय नताबिब्रा?
1: रेडियो सेट ताय दे गे उटुर जुताय होय।
0: ओ मयिक सेंगबो सेंगदबगी मपाउ मतेम त तंबिरमु?
1: ओ मेटी फय सेंगे होय इटु टुचु फजने सेंगे रगो ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल गी कंगला सिने जिदि सोटा जु पंगी मीडियम जु सों।
0: ओ याम न नुंगाइजे सिगी मपाउ जि ताजब मतम दको। अदुदि होय होय। इसाई खुदल तमजरलगे इसागी खोंजेल द मतेम त गंगबिरमगुद्रो? হয় হয় কৰিছো কাইদে দিমৰ মোপাং সিঙ্গল হয় পুনৰ তামিনাৰ চৰাৰে চেৰেং বা দুগ জয় চামনা চেৰাং বৈছে নি।

容老公聆听我不破烂文的我那声音。

0: ताहनजरीबा इसाई असिगलो इन्हना मणिपुरी फिल्म इसाई संदोक चबा लोई जरी आकाशवाणी इम्फाल हाउसिक दिल्ली दगी रिलेदा ताबिरशी इकाई खुमनजरीबा भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी न मियाम द पीबा पुकनिंगी वारोल मन की बात चामगा कुंठा मंगा सुबा तांकक
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: महात्मा गांधी का कहना है,
4: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
6: कोई बोले राम राम,
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है,
1: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात, आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल

114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना

से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और
अंधविश्वास को पीछे छोड़कर के रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे।
एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है।
अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो।
जो लोग

0: किताबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ताबिरे, भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मियाम द पीबा पुकनिंगी वारोल मन की बात चामग कुंथ्रा मंगा सुबतांग हौजिक संदोक्चरी पुकनिंगी वारोल असिगी मणिपुरी वाहन थोक
3: अईगी नुशीजरब इरेवाक चासिंग खुरुमजरी मन की बात ता मयामग अमुक हन उनवसिदा ओंथोक नुंगाई जखरे चही लिसिंगनी कुनग तरुक असिगी तंखाई अमा हौजिन खिगदौरे हौखिब था तरुक असिदा अखोइना इरेबाक चासिंगी थोयदोकपा माइ पाकपसिंगी मरमदा नैनखरे जुन था असिदसु लैबाक असिदा माइ पाकप खर लाखली मसिदा इरेबाक चा खुदिमकना चौथोकचब फाउरी माइ पाकपसिंग असी लैबाक असिगी ngakselगी थबक अमदी इरोमदोम लेपचब असिग मरी लैनै हंदक अइहाक कोलकाताडा इसिंग लानमीग मरी लैनबा थौरम अमदा सरुक यारुनबगी खुदोंगचाब फंगजखि मफमदुदा INS दुनागिरी INS संशोधक अमदी INS अग्रयबु भारत की इसिंग लानमीगी तेंगोलदा हापसिले जहाज सिंग अदुगी डिजाइन अमदी सेंब साब पुंबा इरेबा की पोथोक नाक्तनी मरुफ सिंग जुन था असिमक्तदा चथोक चसिंगी लमदसु लैबाक असिना अचौब माइ पाक पुरगली C295 असि भारत साब एरोप्लेनी लोइनना मसीना अहानब ओइना नोंथक्त पाइख्रे असिगुंबा एरोप्लेन निफु हौजिक भारत सारे मसीदगी MSME अमदी एरोस्पेस सेक्टर दसु अनौब थौना फंगलगली सेल थोकप थबक फंगबगी खुदोंगचाबा हेंगलगली लोइनना भारत की इरोमदोम लेपचबगी फिरेपसु मारा चेलगली हंदकी था असिदा DRDO ना इरमदमद

0: ꯁꯥꯖꯕ ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯀ꯭ꯔꯨꯁ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤ DRDO ꯒꯤ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯄꯥꯛꯇꯒꯤꯅ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯥꯂꯪ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯖꯣꯒꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ 2,500 ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯖꯣꯒꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯥꯗ ꯑꯍꯃꯗꯕꯥꯗꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯕꯤꯁ꯭ꯋ ꯖꯣꯒꯥꯁꯟ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ 102 ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯀꯃꯥꯟ 114 ꯐꯪꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯐꯪꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯨ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯍꯣꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯕꯨ ꯎꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ꯫ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ, ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛꯇ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯄ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ, ꯀꯥꯔ ꯄꯨꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯂꯧ ꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯅꯥꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛꯇ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯄ ꯂꯦꯞꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯔ ꯄꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ꯫ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯕꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯗ ꯆꯠꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯁꯦꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯏꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯣꯏ꯫ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯄꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯅꯥꯟꯗꯦꯔꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔꯄꯨꯔꯥ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯄꯦꯠꯀꯔ ꯁꯥꯒꯩ ꯂꯩ꯫ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯋꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 300,000 ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ 100,000 ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯄꯠꯆ ꯂꯤꯠꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯔꯛꯁꯥ ꯕꯤꯃꯥ ꯌꯣꯖꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 20 ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯆꯍ� ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯂꯨꯄꯥ 2,000 ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯔꯣꯔ 59 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯀꯔꯣꯔ 29 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ, ꯏꯟꯗꯣꯜ, ꯏꯆꯦ, ꯏꯆꯜ, ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯄꯥꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ 300,000 ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯤꯕꯟ ꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤ ꯕꯤꯃꯥ ꯌꯣꯖꯅꯥꯁꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡꯕꯨ ꯂꯨꯄꯥ 2,00,000 ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 236 ꯈꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯔꯣꯔ ꯀꯨꯟꯇꯔꯦꯠꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯥꯈ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏꯃꯨꯛꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟꯒꯅꯤꯊꯣꯏꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥ ꯀꯌꯥ, ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯑꯆꯧꯕ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡ, ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯇ ꯑꯟꯗ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯤꯔꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯀꯤꯕꯁꯨ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯟꯗ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯇ ꯂꯨꯞꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯟꯊꯗꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯟꯗ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯇꯒꯤ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯔꯒꯤꯂꯥ ꯀꯧꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯎꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯀꯣꯟ ꯁꯥꯕ ꯎ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯛꯊꯠꯂꯤ꯫ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯕꯔꯃꯟꯅ ꯎꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ꯫ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯠꯇꯦ ꯈꯟꯅꯔꯝꯕ ꯎꯆꯦꯛꯇꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯁꯛꯈꯪꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯔꯒꯤꯂꯥ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯗꯨꯅ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯃꯥꯖꯕꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯪ ꯊꯥꯖ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ, ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯅꯍꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯡꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯨꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯍꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯕꯦꯕꯤ ꯂꯤꯛ, ꯃꯤꯡꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯂꯤꯛꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯍꯟꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯅꯩ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯐꯨꯠꯁꯥꯜ ꯂꯤꯛ, ꯐꯨꯠꯁꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯧꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯃꯉꯥ ꯂꯩ, ꯁꯥꯟꯅꯐꯝꯁꯨ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯏ꯫ ꯃꯔꯝꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯐꯨꯠꯁꯥꯜ ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕꯗꯨ ꯎꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜ ꯂꯧꯕꯤꯁꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ, ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ AI ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ? ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯤꯔꯕ ꯅꯂꯥꯟꯗꯥ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯅꯂꯟꯗꯥ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯄꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯅꯂꯟꯗꯥ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯜꯂꯦ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯊꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏ ꯅꯂꯟꯗꯥ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯚꯣꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯔꯦꯃꯣꯅꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏꯃꯨꯛꯇꯤ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯅꯤ ꯂꯤꯔꯕ ꯆꯠꯅ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯁꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯩ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯕꯤ ꯇꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯧꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯔꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯒ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ AI ꯇꯨꯜꯁ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯨꯂꯤꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯀꯌꯥ ꯁꯪꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯅꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯔꯤꯕꯤꯌꯟ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯟ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 100 ꯂ� ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯄꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯀꯃꯜ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥꯅ ꯀꯧꯔꯝꯃꯤ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯕꯩꯗꯤꯛ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯕꯩꯗꯤꯛ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯁꯨ ꯇꯝꯂꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯝꯂꯝꯃꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯨꯁ ꯁꯨꯛꯇꯝ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯛꯇꯝ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯨꯗ꯭ꯔꯝ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯁꯨꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯃꯍꯥꯇꯃꯌꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁ�ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯀꯃꯜ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥꯅꯥꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯕꯨ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯕꯨ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯅꯣꯡꯐꯥꯏꯅꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯇ ꯑꯗꯣꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯖꯒꯦ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯨꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯅꯤꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯈꯤ ꯔꯕꯔ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯍꯜꯂꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯔꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ब्रिज असिगी तोंगानबा मगुंदी मसी अहिंगबा ब्रिज अमनी मतम कुइरा कुइरागा मसीगी मपांगलसी यामना कल्ली मसीदा मेघालयगी मियोयसिंगना सेंबा साबा हैबगी कला अदु उबा फंगी मसीगी मरमदा चही चा कया लेप्तन होनरकपा अमदी प्रकृतिगा सागोनदुना लैबगी ममी ताय ब्रिज असिना मियोयबा अमदी प्रकृतिगा पुंदुना अंगकप पोट कया पुथोकप ngami हैबसी ताई मसी अइखोयगी लैबाकी लमसीगी लेंगद्रब लन्नी हौजिक भारतना मेघालयगी रूट ब्रिज असी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क ता याहुन्नवा हाइजख्रे मरुफ सिंह क्लाइमेट चेंज नमरम ओइदुना रूट ब्रिज असी अवाब कया मायोकनरी असिगुंब मतम मसिदा मेघालयगी मियोयसिंगना प्रकृतिगी ओइबल लन्नसिबु ngak senbagi thabak paikhatli asigumba breathing asi kaya yamna lei haina thigatpa asi araiba thabakti oide adubu lamdugi miyoi singna masing thibagi thabak haukhi masigi matungda kangrup kaya gi miyoi singna breathe asi ngak senana bagi thabak tawi ngasidi mapham sigi miyoi singna breathe chamaga kungi mathakta yingsinbagi thabak chathari tim kharana चही खुदिंगी ब्रिज असी यिंगसिनबगी थबक तौरी मियोय खरा अमना मनाक नकप मफमसी हेन कन्न नबगी दमक पांबी कया थाबगी थबकसु तौई मतवसुमना मखोयबु ngak सेनबगी दमक इकोसिस्टम गी थबक थोरम कया थौरांग तौरे अदोमसु खंगबिरमगनी मदुदी चही असिदा हेलीवार जिदा पद्मा अवार्ड पीखरे महाकना महाकी पुनसीगी चही यांखई हेन ब्रिज असिगिदमक थबक तौखे महाकी कथोकपगी मौंग असी अइखोय पुंबन तमजनिगाइनी मरुफ सिंह अदोमन करिगुंबा रूट ब्रिज असिद चलुरबदी मधुगी फोटो सिंग अदु सोशल मीडिया दा सोइदन थागतपियो अदोंगी फोटो अदुना अतोप मियोय कयाना मेघालय गी अंगक प फजरबा लनगई पुकई कयागी मरमदा खंगन नबगी दमक तंजा अदु फंगनी अगी नुसीजरब इरेबाक्चा सिंह अखोई पुंबना अखोई की खुंगंग सहर असी तरु तनान थंब हैबसी पामे अदुबु अखोई ने लंबीदा अमोट अकाय उब मतंदा मसी मखोई की मथौनी मखोई ने तौगदबनी हाइन खले अदुबु अखोई की मरक्तसु मखोई ने तौथोरक प थबक कयादा अखोई ने तमजनिगाय ओइब कया याउदब नते अइना मध्य प्रदेश की राजगढ़ जिला की बरारेगी इचल सिंगी मरमदा खररंग पंजगे मखोयगी मनाक नकप सिंगदा चाइथोकलीबा प्लास्टिक की अमोटप कया सेंदोकनबगी वासखे मखोयना मसी कनागुंबा मियोय सिंगना सेंदोकनी हाइबगी वखल खनखिदे मखोय मसामकना सहर सिनब थुंगना प्लास्टिक की अमोटप कया अमदी आहांगब बोतल सिंग सेंदोकपगी थबक हौखे तपना तपना मखोयना फत्तब प्लास्टिक सिंगबु इको ब्रिक्स ओइना ओंथोकलमे ngasidi eco bricks asina mapham ayam bada sizna duna yamna phajaba ama oire rajgarda haukhiba tha kharasida plastic kg lising kaya recycle tawduna aphaba thabak kaya da sizna khre haibadi saharda saikhai duna leiramba plastic kaya adu ngasidi isel sing asigi hona jamana aphaba thabakta sizna bangamle aina bararagi ise isel pumba amadi थौरम असिद याव पुंब थागत्प फोंदोक्चरी आईगी नुंसीजरब इरेबाक्चा सिंह आईगोंदा मियोय कयाना यामना मरु ओइबा हिरमसिदा वाही खर फोंदोक्नबा चिठी इबिरई मसी गणेश उत्सव का मरी लेनबनी गणेश उत्सवती यामना वाटली अदुबु मियामना हाइजबदगी हिरमसिदा वा खर फोंदोक्चगे गणेश जीगी मूर्ति साबगी थबक असी यामना वाटलिंगैदगी साब हौनै मूर्ति साब मी मूर्तिबु योनगदब मी पुनमक हौजिक्तगी थौरांग तौनरे मरमसिना अइना अदोमद हाइजगदबदी अदोम अदोंगी युमदा सोसाइटी नत्रगा मनाक नकप मफम सिंगदा गणपति बप्पागी मूर्ति लाटपतारबदी अइखोइगी देशकी लैबाकना साबा अइखोइगी सफु साबा अमदी खुत्सा हैब सिंगना साबदमक सिजिनसी अदुगा गणेशकी मूर्ति साब सिंगदसु अइना हाइजगदबदी मखोयना अहानबदा लैबाकी मूर्ति दमक साबियु अदुगा मूर्ति लैबिरिबसिंगनासु मूर्ति अदु ꯀꯔꯤꯅ ꯁꯥꯕꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯥꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤꯅ ꯄꯨꯖꯥ ꯇꯧꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯃꯥꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯁꯥ ꯍꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯒꯅꯦꯁ ꯎꯁꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯁꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯛꯇꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯥ ꯀꯌꯥ ꯇꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯃꯥꯖꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯃꯥꯖꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯅꯔꯁꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯕꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯣꯝ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯀꯦꯠꯁ ꯗ ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯗꯤ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ 145 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯣꯂꯥꯡ ꯊꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯦꯃꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯔꯠ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

ताबिरी नंगना ओलांग थानी लाइश्रम मेमगी खुंजलता सरत आरंभमना सैरेंगबा मतम इसयमा आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमित युंगबा पुंग तारानी थोई तारे मणिपुरी द पाव ताबिरसी।

0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯆꯦꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯅꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠꯄꯨ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯂꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯁꯦꯁꯜꯁꯀꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤꯒ ꯉꯁꯤ ꯎꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯉꯁꯤ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅꯒꯔꯗ ꯄꯤ.ꯑꯦꯝ. ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯤꯌꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯔ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ꯫ C-295 ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯊꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯁꯥꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ 935 ꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ MSME ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯔꯣꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠꯄꯨ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯍꯜꯂꯤ꯫ DRDO ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯀ꯭ꯔꯨꯏꯁ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯄꯥꯛꯇꯒꯤꯅ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯥꯂꯪ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯠꯂꯦ꯫
1: ꯖꯨꯟ ꯀꯦ ꯃꯍꯤꯅꯦ ꯃꯍꯤ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯃꯦ ꯚꯤ ꯗꯦꯁꯅꯦ ꯑꯦꯛ ꯕꯗꯤ ꯁꯐꯜꯇꯥ ꯄꯥꯏ C-295 ꯌ ꯕꯤꯃꯥꯟ ꯃꯦꯗ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯦ ꯑꯣꯔ C-295 ꯕꯤꯃꯥꯟꯅꯦ ꯑꯄꯅꯤ ꯄꯍꯦꯂꯤ ꯎꯗꯥꯟ ꯄꯨꯔꯤ ꯀꯤ ꯍꯦ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯁꯦ 40 ꯕꯤꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯦ ꯍꯤ ꯕꯅꯥꯏ ꯖꯥ ꯔꯍꯦ ꯏꯁꯦ MSME ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯔꯣꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯀꯣ ꯅꯈꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯃꯤꯜ ꯔꯍꯤ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯀꯦ ꯑꯥꯎꯁꯔ ꯕꯗ ꯔꯍꯦ ꯑꯣꯔ ꯑꯥꯇꯃ ꯅꯤꯔꯚꯔ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯥ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯚꯤ ꯃꯜꯕꯨꯠ ꯍꯣ ꯔꯍꯥ ꯍꯦ ꯏꯁꯤ ꯃꯍꯤꯅꯦ DRDO ꯅꯦ ꯁ꯭ꯋꯦꯗꯦꯁꯤ ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯦꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯀ꯭ꯔꯨꯖ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥ ꯚꯤ ꯁꯐꯜ ꯄꯔꯤꯛꯁꯟ ꯀꯤꯌꯥ
0: ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ 2,250 ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯇꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯣꯇꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯣꯒꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯑꯍꯃꯦꯗꯕꯥꯗꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯤꯁ꯭ꯋ ꯌꯣꯒꯥꯁꯟ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯨꯞꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ 100 ꯁꯨꯞꯅ 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯀꯃꯥꯟ 114 ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯐꯨꯠꯁꯥꯜ ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯎꯠꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯇꯩ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ AI ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯔꯕ ꯅꯂꯟꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯠ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯧꯅ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯁꯛꯇꯝꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯔꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯠꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯅꯤꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯁꯥꯏꯠ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯂꯤ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯕꯨꯠ 2,000,000 ꯑꯅꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ 40 ꯔꯣꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯝꯐꯥꯜꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯥꯔ.ꯗꯤ.ꯋꯤꯡꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒ�ꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯅ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯄꯤꯊꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯕꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯧꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡꯗ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯥꯏ.ꯗꯤ.ꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯥꯏ.ꯗꯤ.ꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯊꯛꯄꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नसी सेल्सियसकी राष्ट्रपति पेट्रिक हर्मिनिंग उन्दना लेब अनी हिरम कयाद तेंबापीनबी मालिंग वफू क्यागी सानगनी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नसी सेल्सियसकी नेशनल असेंबली वागनी मफम भारत मचासी सानगनी मधुकी तुंग श्री मोदी रोस केमेंद पांगथोकदब नेशनल डे सेलिब्रेशन सरुक यागनी मंत्रालय ने हाय इंडियन डिफेंस फोर्स की कॉन्टिंजेंट अम यावना भारत नेवी की जहाज अनी थोरम अदुद सरुक यागनी केंद्र की गृह अमसुंग कॉर्पोरेशन मंत्री अमित शाह नंगसी पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट होदोकलगनी गांधीनगर दंगसी निमिदावरम होदोकदब थोरांग असिना मियांगी हक्सल अमसुंग याइफनबगी थौसल सिंगद मियंग थमली श्री साहना अहमदाबाद पांगथोकदब बूथ प्रेसिडेंट सिंग अमसुंग शक्ति केंद्र की मयोग अखनब चिटिन सिविर मिफम सरुक यागनी मिफम कुंगंगी मियांगी याइफनब थौरांग कयागी मतांग खनगनी अमदी श्री अमित शाहना लोकल पार्टी की मेंबर सिंग उनागनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हुकुम मखाद हौजिक चथरब इलेक्ट्रो रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एस आई आर द मिजोराम इनुमेरेशन फॉर्म सिंग डिजिटाइज तब की थब चाद चाम लोशिले राज्य सीईओ ऑफिस की पाउन हाय एस आई आर की अहम सुब तक की राज्य तरतु यूनियन टेरीटरी अहम की मिजोराम एस आई आर डिजिटाइज तब अहम राज्य और सरकार की पाउन हाय चे मे कुंथ्राद की चतर एस आई आर की थब बूथ लेवल ऑफिसर लिंग चहुम सूबना मौ तौरी लिंग अनी मंगा पांगथोब एस आई आर वोटर लाख मंगा लिंग यांखई मापन चाम कुलहुमदी हौजी पांगथोब एस आई आर वोटर मसिंग हेंगतुना लाख निपान लिंग हूंभद्रा मंगा सूबना हूंभु निपान ओरी अरुणाचल प्रदेश की पोसाद इसिंग इचाव की अवाब हजू मयोगनरी एस डी आर एफ टीम नरान के पोन्यो जिला मी कन तीभूम की थबू चब हचांग फंबे जिला की डिप्टी कमिश्नर हाय हौजी फाबद मयो अनी हचांग फंगले अहम थीब खादन लेरी मखाता थीभूम की थब चथरी चिंखाबर और पोटिन की मिंग लंबी हौजू फाउनरी चिंखाब याब मफम पुलिस पर्सनल मिकुम नाम मौ तौरी लंबी संगदप की थब कथरी अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खंडू नंगर अखनब सिविल मिलिटरी एक्सपीडिशन ऑपरेशन अरुणोदय मखाद तवांग जिला की तीनबूंग ब्रेजिंग जिला फाउब की ट्रेकिंग रूट हांदोखे ट्रेकिंग रूट अदु भारत लामी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पुनः सिंधुना हांदोखी सोशल मीडिया थगप वारोल श्री खंडू हाय मधुन अरुणाचल प्रदेश टूरीजम की लम चौखन मफम मियांग अनोब खुदोंचाब क्या फंगलगनी तेलंगाना की हैदराबाद लंबी अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मम लौदनाथम श्री ट्रंप भारत थगप फोंदोरगली ट्रूथ सोशल थगप वारोल श्री ट्रंप लंबी की मिंग डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू है थोब अ राष्ट्रपति इकाई खुम उत्तना भारत लंबी की मिंग थोब अहब अमेरिका की राष्ट्रपति इम्फाल वेस्ट जिला की यूनाम हुईद्रोम चतरप ता चैंपियनशिप लिंग कुंतरुक लुशिंगे हुएल लालों थांगे एसोसिएशन मणिपुर था कुमादी छिंदुन पांगथोप चैंपियनशिप सानर चनी मरफुद्रा तरुक सरुक याखी सानर नुप चाम मरफुतरुक चाम तरह सरुक याखी लुशिंब थोरम आर एंड कल्चर मंत्री खुराइजम लोकें हुएल लालों थांगे एसोसिएशन मणिपुर की प्रेसिडेंट डॉक्टर हुईद्रोम प्रेम कुमार अटे ऑफिसल सरुक याखी मकों मत ताब सानर मना मतखी फीफा वर्ल्ड कप की सान की मैच इंग्लैंड पनाम पांजल अनीद क्रोएशिया घना पांजल अनी डी आर कोंगो उज्बेकिस्तान पांजल अहम थोखे कोलंबिया पोर्टुगल पांजल चेनदन ड्रो चखे अयु पुंग तरखाई सान की मैच अर्जेंटीना जोर्डान पांजल अहम थोखे अतोप मैच अल्जेरिया ऑस्ट्रेलिया पांजल अहम चेनदन ड्रो चखे हौजी अरब अरब पाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैथोक लम चौन माइ पाक्न भारत मरदम लेपचनब की फिरेब मरा चेल्ले मणिपुर यौन लेबा चेह मंगा फाव की मूंग आगे पोलो हिदा पिथकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्सियस की राष्ट्रपति की उन्द्र अने की अफब मरी थमनब वफू क्या खनगनी केंद्र की गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर पी एम फैमिली केयर ट्रेकर पायलट प्रोजेक्ट होदोलगनी पाव लुजरी
2: Presenting Mahindra's all-electric SUVs, the BE6, XUV9e and XUV9S. With a real-world range of over 500 kilometers, lifetime battery warranty and ultra-fast charging from 20 to 80% in just 20 minutes. So what are you waiting for? Visit Shiv's Auto Imphal for test drive today and bring home your dream car.
3: Akashvani Imphal, Adon Matabiriba Si Kangla Channel Ni. Hauzik Lanthok Chari, Radio Lila, How Bakonu Lila Si Salam Munal Singhi Lairik How Bakonu Dagi Salam Rupa Chandra Singhna Radio Lila Oina Itokpani Lila Putokpada Tengbangba Ashem Manglemba Lila Putokpa Maibam Ishakanta Hauzik Tabirashi Radio Lila How Bakonu
4: Singgi bungunung siba laibag tiba hawo. Isihimbuk kari hai na paumila sige. Laurenan ba pantaw bo pantaw na ta pantaw saru. Laurenan bi palim bo palim na ta palim saru. Awabag kong pamni iduning taw. Laibag tiba na akse. Panglin sang nilai minau tamlabi. Icim na nupiyo ibi mapo. O iba na panggal tok pangamdre ni duning tao.
5: Palim! Palim sakpi icim hal! Icim hal!
4: Moirang macak kanano! Lay tun suay bukaw riba!
5: Na duning tao naupane! Ijem hal, thongi na tay kang biyo, char gi pauron chat biyo.
4: Hai, moi rang masa lam hin ba. Kay the lak pa pham nai ba, ai gi ipure ba angam ba na taraga. Yai bi thawai mangani khulai thu na han kro. Lai ton shu hai bi ai gi di ipwa amat talai jadi.
5: O thok pani, lam ja oira ba ai hak se. सरा चल लब तो लब से मोइरांग यांग बी थक द हिप तूना अयुग येंदा अंगन बदा कोनुंग कारक प अंगम बमान तोंग लग प यांगोई सगोगी खुमांग ने निथल लग याई बी माबु था रगे कई दबु कानगनी हिंगु बगी यांग बी थक द हिप लगे
6: I'm going to go to the house. ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯀꯩꯗꯅꯣ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯟꯒꯅꯣ? ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯠꯇꯦꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯣꯝ ꯑꯃꯇꯁꯨ ꯄꯣꯝꯗꯦ, ꯉꯁꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯎꯅꯕ ꯏꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ, ꯀꯣꯅꯨꯡꯀꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯄꯥ, ꯀꯥꯔꯔꯣꯏꯗ ꯄꯥꯔꯤꯑꯣ, ꯀꯨꯝꯂꯁꯤ ꯏꯄꯥꯏ ꯁꯪꯒꯥꯏ, ꯄꯟꯊꯧꯅꯗꯤ ꯈꯟꯒꯅꯨ, ꯏꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯂꯥꯡꯒꯣꯟꯒꯦ, ꯂꯥꯎ ꯍꯧꯒꯠꯂꯨ, ꯐꯩꯔꯥ ꯊꯛꯇ ꯐꯝꯂꯣꯔꯥꯎ, ꯁꯒꯣꯜ ꯊꯛꯇ ꯀꯥꯁꯤ ꯂꯥꯎ.
7: ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯋꯥꯕꯨ ꯆꯤꯡꯑꯣꯏꯅꯕ? ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯅ ꯌꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛꯇ ꯑꯁꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯤꯅꯤ ꯇꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯋꯥꯅꯤ, ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯌꯣꯛꯄꯅꯤ.
6: ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯉꯥꯃꯣꯏ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯄꯨꯔꯦꯜ ꯅꯅꯥꯏ ꯅꯣꯡꯊꯣꯟꯕ ꯈꯨꯌꯥ ꯈꯥꯗ ꯆꯪꯖꯔꯤꯗꯣ ꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ,
7: ꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯡꯗ ꯐꯝꯂꯣꯂꯥꯎ.
6: ꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ,
7: ꯏꯗꯥꯏꯔꯦꯝ ꯑꯉꯝꯕ, ꯅꯪꯅ ꯅꯐꯥꯔꯤ ꯃꯐꯝꯕꯔ? ꯍꯔꯥꯎꯕꯤꯒꯦꯗꯧ ꯇꯌꯨꯝ, ꯅꯋꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯕꯒꯦ?
6: ꯍꯩꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯩꯃꯥꯕ, ꯁꯟꯖꯦꯟ ꯁꯉꯥꯛ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ?
7: ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯆꯥꯟꯕ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ, ꯅꯣꯡꯃꯇꯪꯗꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯎ, ꯆꯦꯡꯂꯧ ꯁꯛꯆꯥꯟꯅꯒꯦꯗꯣ?
6: ꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯃꯥꯕ, ꯅꯅꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯗꯝ ꯐꯕ ꯃꯄꯣꯛꯅꯤ, ꯀꯣꯔꯧ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯡꯖꯥ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯏꯊꯧ ꯒꯥꯏꯕꯨ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ, ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯔꯧ ꯅꯣꯡꯒꯤꯗꯤ ꯏꯔꯥꯟ ꯌꯥꯏꯗ ꯀꯨꯝꯖꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ,
7: ꯈꯣꯡꯗꯣꯏꯖꯔꯣ ꯑꯉꯝꯕ?
6: ꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ,
7: ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯝꯕ ꯇꯔꯥ ꯅꯈꯣꯏ ꯋꯥꯒꯅꯣ, ꯅꯐꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯦ, ꯏꯅꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ꯃꯣꯟꯗꯨꯝ ꯃꯨꯇꯦꯛꯇ ꯐꯝꯍꯟꯒꯦ, ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯩ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯌꯦꯡ ꯀꯣꯔꯧ ꯅꯣꯡꯖꯥꯗ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯋꯥꯁꯦ ꯌꯥꯏꯕꯤ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯛꯈꯝꯅꯍꯜꯂꯨꯍꯦ,

0: Mata manai ani si tungga mangga siat ini. Ah, ipagi kono. Napu nanai ani bu. Asuk ngenelaku di kari haining belai bagi.
1: Pantau apa pa? Namo mani nalak sabadi.
0: Ah.
1: Sanu ningol itamayam. Kege lok tak kumduna lemlay ngami tiem babu sat kadauri ye pantau. Aikoi su yau zeru gene pantau.
0: Ipa gelang le nyai tingkonu.
1: Pantau.
0: Ah, nakoi ne ipa bu kiri na. Sama de kari wali sir pa de kari na ning tung de. Koro mai sa lak ta nu sa mai na kahat babu. Ipa na karam na yengu ge. Sat pa yaroi imam sa.
1: Pantau apok pa. Ningol gi mapoka ensang gi mathelga upa amatani do
0: romge
1: panthau nak ta leiringai huning sumbagi masani kana gumbagi nak ta yauraga karam thuk lagadage ne khangjadi taibang mi gi mapokti awang baka ba loiraga anem bada kumtharai wang bana matol lo mido panthau sangai da leiringai lamlan bakanagi magaida ongluraba wanglenduda kumtharakba oiramtho panthongne yengba nungairo
0: holamle
1: waraklaba wanglenda ngaklo oige yaba sintha ihei kharadang thiza hogene apokpa
0: holamle chilam sintha tambu oirabadi a sasaru lo adubu imo nanai kaya pugege nabung kaya le phaluge ipan singoine jo
1: नते नते पंथो आवाब थेंगनाबदा नुंगाइन सचचनिंग देदो इबुंगिक पाकनागासु लोइना हनबिगनो पंथो इता कयागी तुंगिन बतमक ओइजगेने पंथो
0: फरे फरे इपागिरांगले
1: पंथो
0: आ वांगलेन पंकुइ कुइरकनो कुरुमाना ताद्रिंगे दुक तन महलो उको
1: पंथो
0: हा पंथो गि इमित असे नंगि दमक पान बनी दो इमोम ना लेटा थो पंथोंग ने येंग ने बा सग येंग छेन हंदक मा पुक थंग लुई को लांग ले
1: पंथो अ पुक
0: बा आ सा सा
1: कोई नो इता सा न बिसा असिवाई द ले हो खो पोंग नो आइ खोई अनि दी पोइरे या दाम ब द उरी बा खयोन गौ बि सोइदा लेम ले इंगा मी थेम जगी ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯥꯕꯒ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯕꯒ ꯂꯦꯝꯂꯩ ꯌꯥꯝꯕ ꯇꯥꯟꯅꯁꯤ ꯏꯁ ꯑꯁꯥꯟꯕꯤ ꯅꯇꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯪꯒꯦꯟ ꯄꯧꯔꯥ ꯂꯤꯖꯥꯎ ꯇꯠꯂꯦ ꯂꯥꯏꯖꯩꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯕꯨ ꯇꯥꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯦꯝꯂꯩ ꯉꯥꯕꯨ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯏꯁ ꯀꯝꯗꯧꯅꯤ ꯑꯁꯥꯟꯕꯤ
2: ꯏꯇꯥꯏꯕꯦꯃꯥ
1: ꯑꯁꯥꯟꯕꯤ
2: ꯅꯪꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯩꯔꯔꯣꯏꯌꯦ ꯂꯨꯏꯕꯤ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇ ꯀꯥꯗꯨꯅ ꯇꯝꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯁꯦ ꯇꯥꯏꯕꯦꯃꯥ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯁꯥꯟꯕꯤ
2: ꯂꯥꯛꯑꯣ
1: ꯄꯨꯡꯅꯨ ꯑꯁꯥꯟꯕꯤ
2: ꯏꯇꯥꯏꯕꯦꯃꯥ
1: ꯁꯤꯡꯗꯣꯜ ꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯊꯔꯛꯄꯗ ꯂꯥꯏꯖ ꯊꯛꯇ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯎꯗꯔꯦ ꯄꯣꯝꯕꯤ ꯁꯦꯛꯂꯥ ꯅꯠꯇꯅ
3: ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯄꯥ ꯂꯩꯕꯔꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯨꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯤꯌꯣ
4: ꯏꯁ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯔꯣ ꯅꯣꯡꯗꯤ ꯀꯔꯝꯅꯣ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯂꯝꯖꯥ ꯏꯕꯨ ꯐꯥꯅꯕ ꯂꯧꯅꯝ ꯂꯥꯡꯊꯛꯄꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯈꯥꯝꯕꯤ ꯃꯩꯈꯨ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒꯦ ꯅꯃꯨꯄꯣꯡ ꯎꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯣꯠꯂꯒꯦ
1: ꯈꯥꯝꯕꯤ ꯃꯩꯁꯨ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯌꯨꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯅꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ
3: ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯔꯣꯡ ꯅꯣꯡ ꯇꯣꯜꯂꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯨꯞꯄ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯍꯥꯠꯄ ꯁꯛꯄꯤꯌꯨ
4: ꯌꯥꯋꯥ ꯈꯣꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯅ ꯑꯣ ꯌꯥꯋꯥ ꯑꯃꯇꯗꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯂꯒꯦ
5: ꯅꯨꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯤꯛꯂꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯏꯌꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯎ ꯀꯧꯔꯤꯕꯤ ꯅ ꯄꯥꯎꯈꯣꯟꯗꯤ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯦ ꯅꯨꯖꯥꯑꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯩ ꯄꯥꯈꯪ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏ ꯍꯨꯟꯕꯗꯤ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯦ
3: ꯀꯔꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯕꯅꯣ
5: ꯆꯥꯗꯕꯅ ꯉꯥꯡꯖꯦꯡꯅꯔꯕ 감못 나라바 쓰레 이뻐 뿡 파나 셋뻐 판다바 박한나 그럼 너부딩 월망들 리에뻐 시게니 사노 와록 미그노 누자오 콩도이 훈비로 누라오
3: 아저기 오이라바디 누라 남탕 마남탕 따자피 사나만 발랑 남아용까비 루파만 바나마펠 오이비 아도기 수마탁다 하이남 나 수라비 라이남 나 하라비 피 타구 마락 아마 탐하우라가 아토파 마락 또 랑자라께 해 싱우 탕징 나학나 마랑 오이나 여한 미우고
4: 누라이 베마 생로 헨비닝 올로 팔렘 판타우 카나기 마모옴노 포이레이 카이데레이바노 콜로이 밀레네 카리 카우바게 카리 타우기 락파노 라이르바부 야와 토이나 파우코우바부
1: 탕렌 만자나 로이담 상나 룩탁 야이데 렌바디 카나라로 렌칼레시 모이랑다 이팜 사누 카두다 툭차나나 레이비유 모이랑 카나 칸갈로 ningon khomlen manglan yai akau parei sanjadri nasi korong nong jadi phangjare do pakhang bu
4: nuza haina tungi luba nayum mong ba irang yoraga ei bu hen ba kana uraga ningon pungning khonglak pada khongban lan ba hiren bu sadong karam dai wangnen da thap na kawram ba gi matau gum ei bu thadok piram labadi pakhang sangjap phom lai jadi mun na pai ma wakhal tau yu ningol
1: ithanglen manja pamuba nurana haijang masing lena tha hairang makoi kakna thang nurana iada siktuna sariwa sak pandom jari ithanglen wakainum da sepiyo thapsana na lenkasine ithanglen
4: nurai bema
1: ithanglen
2: ita itai bema
1: ita
2: inunda pangkhokla maya mamaleiri sibu karino aimi tai bema
1: अतना तेताय हाईदो पशु इकाई जे
2: इताई भी।

0: 哎，不都唐人过来来，家己来泡高不个？恁偷人的房门啊，再说我空养了你，再俺们的穷了你，恁偷人的地捂着你，再说我空钱了路，再俺们的赔的，那这么地没人蹲那忙着呢，空偷人不给把扒的嘛，乱的偷那来不呢？马不路的弯的提了个。ma pa pa re pa lo te swa wa khong te ma lo ta ya ma re l phoi da he bu do thang jin ju ka ri lai pa lo nong thom ba ngam ba
1: ining tho
0: phun tho re ma gi ba pa ri ma lai hai ba si te ne ba di te swa wa khong sheng na ba bu ro swa pa da ba ya thang ni ni tho ai gi
2: lai ma ba ta pi ri ba ya wa do ka ri ya wa bu ko bu ke le Dhamma mahagado amu khanna panglar Mamang thaki wapam shana wakal to viyune lai maba
0: Kari no angamba Ning thau ay wakal to haibadi
2: Lai ning thau o Khamnung shawa taan kraba Aman tharai kum kraba namu kanabu Taibang malang paansida amu thura u Yabaka kauna dene purit lai
0: Kari shingoy oibano मदुन हेन वखल थोक तरेने निंग थो आईदी
2: मपुगी दी एक नबा कना गुंबगी चिंगाय वा ताबत मपु या थंग तुंगिना लैरांग मरु फुक्तुना लमखांग द मांगन बिखरे
0: अदु दी हायो तयम लैरांग मरु कना ना फुक्पनो
2: अदुंगे तयम तराना शना मांग दगी पुंदुन पुखिबा लमदम माताम बद हात खिबा Ning sing biune ning tau.
0: Kerino angam ba. Aidi kena usu hat kide na.
2: Kon tau le mbagi le kunda. Le rang le kong sembi na ba le tana. Pom chat narak ba matam da. Mapu gi na apa da thon ba ya ga da ba. Le rang adu bu. Nong thon mbagi kunda. Lai za kiklen chai du na sem za ba le. Le rang le ka padri ngay. Le rang phugai na satri ngay. नहीं तू न मांग करे मपूषना या तंग तुंगी ना
0: या तयम आई वक़ल पंथेंगले वरी पुरिंग चुम्ना तमलों ने अंगबा
2: नवा मचा में एक नवनी खंबी दुन हाथ कीबा अते यंगां कनालते कुंठोरे अंबगे मत तंगायर बपारी कुयों नावनी ने लाई माबा
0: निंठो ऐडे पंगी दा इनाय मराल लैजद बबु नमदर मराल कोथोंग न कहनबा आइसे ओथोंग सु फटकि दे इहाक थक केगे मांग दब मोरांग ले पाक ताक दब सरुक पुदि आइ हान याबि केम लगे तरा चाखेन हे लगे
2: पुरित लाय ओले मापा नसी सना मांग द वागे अशुम मरान खंग द वा लोबि बयाबा वा खक त लोबि उ पुनेम जरी
0: लेपाक निंग थौगे वार ब वांगलेन द लंगला लंगजिन ताक थोक पवा बो ताब द कई द बो अरान ओही लई बगे वांगलेन पंथ ब तौ दन तम थोक लो अंगम बगे वारी परि द
2: मपुन कांखुल मुट खरब लई रांग मु थीबी ब चुंगनी ने लाइनिंग थौ
0: अंगम बा लई रांग मा बो फंग द बन अवा ब लुतोन पु दन निंग थौ ऐशु याबी थवाई मांग लगे लई बसिनी
2: अंगांगे वापम वेरे बद पाय म पिबु वाबी गनु लैरांग मरु दो केगे लोक ताक त हुन खिदु लैरांग मो चोंग दु नले ननाय कना गुमगे मशीन दगी ताजे दो ननाय ना
0: वरी परिं मखा ताउने अंगंबा
2: विनिंग सुंब म मोम लोय नुरा याय थें कोनु ना अदुंगै लोक ताक गामी थें ब चतपद हाउ ब माबु थें न दुना निंगोल कादा थाबुम खरा थुपसा नन थमजे खिदो लाइनिंग थौ मदुकी दमक नानाय आइन खुमन काउबा याय थें कोनु अनिगी मरान लुहोंबा थाबुम मंगा ये थोकसखि इबेम कोनु मान खुमन द ओं खरवद मपुन थीरि ब लैरांग दो खुयोन गोबी शोइद कनान सुदना पोमसात नन लैरिने इनिंग थौ
0: उनबी पोंनिंग पेले हे अदुदि निंग थौ आइ गि याथंग तम्मा मत्त याउदना चनु निंगोल मयाम 향희를 똥두나 하부마무 꼭할루

0: इचेबे मा हाउरलै तोनसु मोइरांग चनुओ इचेबे मगी नोरेलना ओइनचिंग येतनचिंग ओइनइन हौरकप इथक इपोम खाय खायदुना हिहोनबा थाबल चोंगबगी लाइरेन मकोक चिंगबगुम नुरामतो उबदा लोकता कौबी लाइरेनबी इमासे मपुक तपथखरे खंगौदना लाइजे इपोमसु नोटख्रे खोंयाम चनु इचेबेमा ngasi aikhoi mayam na loktak iyai de lakpadi mapu moirang ning thona ichebe magi ipa haububu kokkhat lucho lakchabane
1: kari hai ba iduning thau ipwa pangal sarok laba matamda sintha pangnana ba thigumit adubu mapu giyatha hai duning thau haubanang bulai raba chargi parol hanglo nangi amatangai jebina chimlakse haidaba yadaba matang oibana yawahi khratandi kangine ipwagi mapamda
2: kanagi khonjelna kanagum biamane kaurina iduni to haiba yawasu yawina
1: pakum kashulaitaba iduning thau ipwa laitaba malida
0: ichibe manung sibi tara thokna kaubi खुन थौरे बगी मपारी लाइन थाब पांडों थोरकनी सोइदना पाइ मपी मुक निहन नगनु देसे बेमा
1: इदुनिंग थौ इदुनिंग थौ परो पुलो हाइख्रेदा नमु ताइबं आइखोइसे नयहाक नुंगाइ बवा खल द ताउ किदुना तुंग द सी थौकनी खंग द दुना ताइबं द वा खल थेन बिना चेम इदुनिंग थौ इदुनिंग थौ इपा नपाल तांगे लाग पनतित मोइराउ निंग थौ किमन खिबन लाग पसुनतित तोलबिन चेम गि मंगलान याइदा इपान वखल वान लेन ब ओबद खांग बंगम ददुना उनब लाग पनिने इदुनिंग थौ
2: पलिम सखपि सेम हलनिदा सेम हल थांग करंग सिङाइ सिदा लै मसनु मयांग गि मांग थादना इसेम इबेम बदल लग पी बबू करी थोगाई तक पी के दबे सेम बेमा नत्र गरा लाय रे बनो पाए हाथ पो ले पाक के दम करी थोगदां पुजो हाई बगे नहीं सेम हन
1: हाउ बा इसेम गी बबू इबुदो थंग जिंग माना तेस्वा वापल तेम न बा इदुनिंग थाउ नंग बुलाई पाउ रख लाय गिले पाउ ही तोक तना मपू मोरांग निंग थाउ ना इदुनिंग थाउ बु अमुक खनवा बतो नचिम अइबुनुंग सिद्रबसु लाइबाग पुदी कल्लुने पहाड़ी सक्तम मान बवो
2: इसे महल
1: इदुनिंग था

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और

0: सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशेल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर फौजी भाइयों के लिए दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

अभी आप सुन रहे थे कौसर मुनीर के आवास में हीरोपंती फिल्म से एक गीत। आइए अब सुना जाए भूल भुलैया 3 से श्रेया घोषाल के आवाज़ में एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और एमजी श्रीकुमार के युगल स्वरों में एक गीत, फिल्म का नाम है भूल भुलैया ट्री। इसके पहले जो गीत सुना था उसका फिल्म का नाम है हीरोपंती और आवाज़ दिया है मोहित चौहान ने। शब्द रचना कौसर मुनीर के हैं और संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

फौजी भाइयों, अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में एक गीत। फिल्म का नाम है ये वादा रहा। शब्द रचना गुलशन बावरा के है और सुरों से पिरोया है राहुल देव बर्मन ने। आइए अब सुनना जाए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत। फिल्म का नाम है मेजर साहब। गीतकार और संगीतकार आनंद राज आनंद के हैं।

फौजी भाइयों, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कंगला चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी।

कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर आपने सुना अरिजीत सिंह के आवाज़ में धुनकी फिल्म से एक गीत, शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं और सुरों से पिरोया है प्रीतम ने। फौजी भाइयों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।

फिल्म इसी हाल में कुदल तमजरी ब फिल्म अहिंग अमदी हौकरे सैसेग ली बिसरिता गजमीर सैरिंग बना सोनिया अमदी चांजुम नाम सैरंग ब विशेषोर मोरंगथेम।

Leine wissen, leck ich denn ab. Schöne Ohren.

0: Anganwadi worker amade atai official sing yauna jila asida sungasi polio hidak pithakpagi thoram pangtokki jila asigi angang lising kuntaret chama marphudrada polio hidak pithaknaba pandam thamli nonne jila jasu national immunization day gamari leinana angang singda polio hidak pithakki jila thakta district health society nonne nasinduna jila asigi primary health center da pangtokki ba thoram nonne gi chief medical officer dr ajin maringmai na hodokki नोने जिला की ओना पुनः अंगांग लिंग मरी चाम कुंठा निथोद हिदाक पिथक नब पांडम थमली थौबाल जिला दसु डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिस न पुनः छिंदुना थौबाल वांग मताबद सीएमओ ऑफिस कॉम्प्लेक्स की कन्फ्रेंस हॉल थौरम पांगठोकी जिला ओना अंगांग लिंग कुनीथोद पोलियो हिदाक पिथक नब पांडम थमली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी चांदेल डिस्ट्रिक्ट इम्युनाइजेशन ऑफिसर अनीना चांदेल जिला दा नेशनल इम्युनाइजेशन डे की थोरम हौदोक्रे थोरम जिला आसीगी चांदेल क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल पांगठोकी जिला आसीगी अंगांग लिसिंग मंगा दा पोलियो हिदाक पिथकनाब पांडम थमली तमेंगलोंग जिला दसु डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी तमेंगलोंग सिंधुना अंगांग सिंदा पोलियो हिदाक पिथकपगी थोरम हौदोक्की हायेंग अमसुंग हंगचितसु युम युम दा चंगदुना अंगांग सिंदा पोलियो हिदाक पिथकनी अमृत 2.0 की मखाद होराइजन इयर लिसिंग अनी निफुतरुक की नंबोल टाउन की जीआईएस बेस मास्टर प्लान की कंसल्टेटिव वर्कशॉप अमंगसी नंबोल सिंगमांग पांगठोक्रे नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल ने सिंधुना पांगठोकी थोरम एमएलए सिंह थौनाउजम बसंत कुमार सिंह डॉक्टर शापम रंजन सिंह नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल की केयरटेकर चेयरपर्सन सिंगाखम बसंत सिंह चीफ टाउन प्लानर टीपीडी नोंथोंबम बेंजू सिंह नचिंग थोरम दुद सरुक याखी कक्षिंग जिला की सोरा पलेल दा राज्य सरकार ने पाइकली थबक थोरम सिंह एमएलए मयांगलमम रोमेश्वर ना चतुने यंगसिनख्रे मांगना हाय कक्षिंग दा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेमगतपा मिपुम खुदिंगमक्ता थकनाबा अफाबा इसिंग फंगनबा पलेल दा इमा कैथेल साबा याउना तोंगान तोंगान चाखोत थोरांगी थबक सिंह माइ पाकना पाइकली मयंग इम्फाल ब्लॉक महिला कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना नोमगी नुपी की खा नईनबी मीफम मयंग इम्फाल कोंचाक मनिंग लेकाई कम्युनिटी हॉल पांगठोक्रे थोरम वांगांगद हाने की मंत्री डॉक्टर के एस रतन कुमार हाय खुनाई सेमगतपद नुपी अचौब थोदांग नुपी सोथब खुनाई कईदोंद चाखोपलोय मखा ताकी पाव की मरत अटें ब्रेक
1: लाख जून की तारीख कुंथ्रा इंगा की पूर्णिमा लेबापोप नुमित की अयुक पुंग तरुक तगी पुंग मापल फाउबा माइबम सागैगी लेमपोपम द लेबा इबुदौ इबेंदौ अपोकप अपोकपी अनिगी मफमदा सागैचा सिंगना खुरुमजबक लोइनना लनथुम निजबकी नुमित अदु थोकले मरमदुना माइबम सागैगी सागैचा खुदिंगमकना सागैगी हैरांग लैरांग अमदी ngamजबक कच्चदुना थौनि जहौननबा अपुनबा माइबम सागै चौखलुप मणिपुरना पाउजे लकली
2: Diamonds Project Department of Pathology RIMS Imphal na breast amasung lung cancer na narab patient singi damakta three molecular test ki khodong chaba pijari hairiba test singa dudi breast cancer gina ERPR HER2 noi amasung KI67 lung cancer gina EGFR mutation test amasung ALK ROS1 PDL1 IIC test टेस्टिंग असिगी मतेंगना कैंसर लायेंगबदा अमसुंग टारगेटेड थेरापीदा जाउना मतेंग ओइगने अकुप मरोल गिदमक डायमंड्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी रिम्स ततानबियो
0: ताबीब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी राज्य की आर्ट एंड कल्चर अमसुंग टूरिज्म मंत्री खुराइजम लोकेल सिंह हायरी मणिपुर मैहौरोल नाट संस्कृति इना खुलब लमदम तरासुब नोंगिन मणिपुरी म्यूजिक वीडियो अवार्ड लिसिंग अनी कुनमंगा यंथोकपगी थौरम वांगांगबद मंत्री नहाय लाइबक थीबदगी हौकीब चही अनी अहुम असिदा राइज असिगी फजख्रबा नाट अमदी संस्कृति कया असी मनिंग हनबगुम तौरी मसी कोखनदुना अइखोयगी नाट अमसुंग संस्कृति असिबु मालेमगी मफम कया यौहन्नबा पुन्न होनमिनसी हायनासु मांगना अपील तौरी सरकारगी माइकैदगीसु पीबयाब मतिंग पीगनी हायबगी थाजबा मांगना फोंदोखी श्री लोकेन हाय
3: लमदम से लेब मीय क्या मलसी फिल्म से देखोई आर्टिस्ट सिंग से ना इखोई मीय बगी नुसी नबो पोरपंग हमनो हनबो असो बथौदांग लोबी होनाय सिमाय हमले थम ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ

0: ꯑꯣꯛꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯇꯤꯒꯤ ꯖꯨꯒꯅꯤ, ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯨꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯐ ꯗꯤ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯣꯚꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 2025ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ, ꯕꯦꯁ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ, ꯕꯦꯁ ꯁꯤꯡꯒꯔ, ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯛꯇꯔ, ꯕꯦꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯦꯗ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ C-295 ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ 90 ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯔꯛꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯂꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯍꯃꯦꯗꯕꯥꯗꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯌꯣꯒꯥ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ 102 ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯦꯗꯜ 124 ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯨꯞꯅ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ AIꯒꯤ ꯖꯨꯒ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯂꯥꯟꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯕꯇꯥꯔ ꯑꯃꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯦꯞꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯘꯥꯂꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯀꯦꯁ ꯗ ꯔꯦꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯕꯨ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯅꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ
3: ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯒꯤ ꯑꯦꯅꯨꯃꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯣ.ꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 1950ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ। ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯦꯛꯁꯇꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ। ꯏ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯏ. ꯅꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯣꯔꯝ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯣ.ꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯀꯣꯜ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯒꯅꯤ।
4: ꯕꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯣ.ꯗ ꯐꯣꯔꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯞ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯣꯏ। ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 29 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ।
3: ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯏꯟ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯁꯦꯜꯁꯀꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯔꯃꯦꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ

10:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका स्वागत है। प्रोग्राम हर श्रृंगार आपके साथ, मैं विकास, नमस्कार।

जी बाहर तो पता नहीं कि चांद मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा, लेकिन स्टूडियो में बैठकर मैं जरूर मुस्कुरा रहा हूँ। और मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि आज हर सिंगार में बात मैं थोड़ी सी पहेली से शुरू करना चाहता हूँ। आज बात करेंगे दो पतंगबाजों की, जिन्होंने न सिर्फ कई पतंग साथ उड़ाई बल्कि हमारा और आपका दिल भी उड़ा लिया। तो अब पहेली क्या है? पहेली ये है कि जहाँ जहाँ अभी आप मेरी इस बातचीत को सुन रहे हैं, वहाँ से बैठे बैठे आपको थोड़ा सा काम करना है। काम ये करना है कि आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन थे ये दो पतंगबाज और जिन्होंने साथ में मिलकर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। जी मैं भूला नहीं हूँ, मुझे वो दो नाम बताने हैं जिनके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा था। आपको पता है कि ये जो दो नाम मैंने पूछे हैं ना आपसे, वो पार्श्व गायन के महारथी माने जाते हैं, यानी ऐसे प्लेबैक सिंगर जिनके नामों के बिना उस दौर के संगीत को अधूरा माना जा सकता है। और देखें तो असल में ये बहुत बड़े पतंगबाज भी थे। अब आप कहेंगे कि नाम तो बता नहीं रहा, तब से गोल गोल बातें बता रहा है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने शायद अंदाजा भी लगा लिया होगा कि ये दो नाम कौन से हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये दो नाम थे रफी साहब और मन्ना दा।

यानी मन्ना डे। पार्श्व गायन में फेमस होने के बावजूद पतंगबाजी इन दोनों का प्रिय शगल रहा। जी, ये दोनों के दोनों एक तरह से एक दूसरे के पड़ोसी थे और अपनी अपनी छतों पर जब भी इन्हें खाली वक्त मिलता तो पतंगबाजी किया करते। यहाँ तक कि मन्ना डे खुद को प्रोफेशनल पतंगबाज मानते और अपनी छत पर पतंग उड़ाते हुए बेबाक अंदाज में गाया करते। कहते हैं कि मन्ना डे को रफ़ी साहब की पतंग काटने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी।

जी बात क्योंकि मन्ना दा की चल रही है तो एक चीज और भी दिलचस्प है जानना। जी वो ये कि मन्ना दा अगर स्टूडियो में हमें ना मिलते तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं हमें पहलवानी करते नजर आते। असल में कुछ साल पहले यानी स्टूडियो में आने से कई साल पहले मन्ना दा अखाड़े में पहलवानी करते नजर आते थे। मन्ना दा के चाचा प्रसिद्ध गायक केसी डे रहे और उनके दोस्त थे यतिंद्र चरण गुहा जो पहलवानी जानते थे। एक दिन वे मन्ना दा से टकराए और उन्होंने पूछा, क्या करते हो? मन्ना दा ने कहा कि जी मैं पढ़ता हूँ

ये सुनकर यतीन्द्र चरण गुहा जी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या करते हो? मन्ना डे ने कहा कि जी मैं कबड्डी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ। हैरान होकर यतीन्द्र जी ने कहा कि व्यायाम नहीं करते? ये सवाल सुनकर मन्ना दा थोड़ा सा रुके और रुक कर बोले, यही तो व्यायाम है, और क्या व्यायाम करूँगा। ठीक है, यतीन्द्र चरण गुहा ने थोड़ा सोचा और कहा कि कल से तुम मेरे अखाड़े पर आना और कुश्ती लड़ना। दूसरे दिन से ही जो है मन्ना दा उनके अखाड़े पर जाने लगे और कुश्ती में पारंगत हो गए। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर पहलवान के तौर पर फाइनल तक पहुंचे।

प्रोग्राम चल रहा है हरसिंगार और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन समाचारों के बाद एक बार फिर जुड़िएगा हम ही से यानी FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ

0: आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
0: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
0: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles president conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognises that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or Aabha ID. The Anti-Corruption Branch, ACB, Delhi has arrested the then Director General Health Services, DGHS, Dr. Vatsala Agarwal and Deputy Controller of Accounts in the Central Procurement Agency, CPA, Neeraj Chopra, in the case related to alleged large-scale irregularities in procurement of medicines, surgical consumables and medical equipment. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram, SSBSK, during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi tomorrow. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampoorna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. In the ICC Women's T20 World Cup, Australia defeated India by 6 wickets in their final Group A match at Lord's, London. Earlier, opted to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Australia scored 172 runs for 4 wickets in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.

11:11 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका एक बार फिर। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में आपके साथ मैं विकास।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार

जी, कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं जिनसे कई दफा हम चाहते न चाहते हुए भी शिकवा नहीं कर पाते। कुछ रिश्ते बारिश की बाद जो मिट्टी से खुशबू उठती है ना, उसकी तरह होते हैं। नजर नहीं आते मगर पूरी रूह में उतर जाते हैं।

किसी से शिकायत रहना या किसी से शिकायत करना भी दिलचस्प होता है। शिकायतें भी कह सकते हैं कि अजीब होती हैं, जिससे होती हैं उसी के लौट आने की उम्मीद भी साथ लाती है। और शायद तभी किसी ने कहा कि गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी। वो बात अपनी जगह है और ये बात अपनी जगह।

11:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मन मीत। आपके साथ मैं विकास। रफी साहब की ये प्यारी सी मखमली सी आवाज और इस आवाज को भुला पाना शायद इस जन्म में हम में से बहुत से लोगों के लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि ये आवाज रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, हमारे दिल को हल्की हल्की थपकी सी होती है ना, जिससे हमें उस खामोशी के पल में भी सुकून मिलता है, कुछ ऐसा ही एहसास करा जाती है।

और यकीन मानिए किसी को भूलना इतना आसान भी नहीं होता। कुछ कुछ इसे ऐसा कह सकते हैं कि किसी किताब से एक पन्ना फाड़ देने जैसा भी नहीं होता। ये तो पूरी किताब पढ़कर भी उसे एक सफ़े पर बार बार लौट जाने जैसा लगता है।

फिल्म का नाम रहा अनुभव। 1972 की ये फिल्म थी और अगर आप में से कुछ लोगों ने इस फिल्म को देखा हो तो आपको याद होगा कि ये फिल्म कितने सारे जज्बात लिए हुए थी। एक एक परत दर परत जैसे रिश्ते हमारी आंखों के आगे खुलते रहते हैं। फिल्म का संगीत इस कहानी को आगे बढ़ाता है। संगीत की बात करूं तो इस फिल्म में संगीत रहा कानू रॉय का, और जिन लोगों ने इस फिल्म को ना देखा हो तो जरूर इस फिल्म का नाम कहीं पर नोट कर लीजिए और यकीन मानिए आपको शायद दिल को छूने वाली ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। फिल्म का नाम है अनुभव। ग्यारह बजकर 40 मिनट होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए हैं आप। आपके साथ मैं विकास और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मन में।

कुछ फिल्में होती हैं ना जो अपने संगीत के साथ हमें बांध लेती हैं, और उनमें से एक फिल्म ये कही जा सकती है जिसका नाम बहू बेगम है। इसमें बहुत से ऐसे गीत हैं जो अगर आप गुनगुनाने लगते हैं तो एक अलग सी आप में एहसास जो है वो तारी होने लग जाता है। 11:50 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ आप जुड़े हुए हैं, और कोशिश कर रहा हूँ मैं आप तक उन प्यारे प्यारे नगमों को पहुँचाने की जो हमारे दिल के और आपके बहुत करीब हैं।

दुलारी फिल्म का ये गीत है। दुलारी आई थी 1949 में और देखिए वक्त 2026 का है, लेकिन संगीत कभी नहीं मरता। पुराने गीत अपनी खूबसूरती के चलते हमारे जहन में यूं ही बसे रहेंगे। इस वादे के साथ कि विकास आपसे फिर दोबारा कभी न कभी जरूर मिलेगा। रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग ले रहे हैं। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दवाओं, शल्य चिकित्सा के सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उप नियंत्रक लेखा नीरज चोपड़ा शामिल हैं। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। बेलफास्ट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए 1 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: द This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajedari aakar nahi aapasi samman aur vishwas par aadharit ho aur jahan hum har desh ke पास पास नहीं साथ साथ चले आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी.
2: The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramagulam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's vision Mahasagar and Neighbourhood First Policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat yesterday. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or Aabha ID. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis said the 1400-kilometre Delhi-Mumbai expressway being built at an estimated cost of 1 lakh crore rupees will significantly improve connectivity between northern and western India and emerge as a major catalyst for the country's economic growth. After reviewing the progress of the Vadodara-Mumbai section of the expressway, Fadnavis said the 157-kilometre Maharashtra stretch is nearing completion. He said out of the 7 construction packages, 5 have already been completed, while the remaining 2 are expected to be finished by August this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Minister said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator, THEIA. In men's cricket, Ireland defeated India by 1 run in the second and final T20 International in Belfast to clinch the 2-match series 2-0. Batting first, Ireland posted 154 for 8 in their stipulated 20 overs. In reply, India fell short of the largest. India fell short of the target, finishing at 153 for 9 in 20 overs. Ireland had also won the opening match by 34 runs. And that is the end of this news bulletin.

ये जानना कि तुम जानते हो कि जानना क्या होता है, ये जानना कि तुम जानते हो कि जानना क्या होता है, धीरे धीरे ये समझना है कि तुम्हारी उंगलियों के बीच जो खाली जगह है वो हाथ थामने के लिए है। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 12 सेकंड, शुरू हो चुका है प्रोग्राम निशिगंधा। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ।

वैसे आज खिड़की के बाहर मौसम कुछ ऐसा ही है, यकीन ना हो तो झांक कर देख लीजिए। अगर आप मुझे किसी खास शख्स के साथ सुन रहे हैं तो उनका हाथ थाम लीजिए, और अगर वो आपसे दूर हैं तो महसूस कीजिए उनकी मौजूदगी को, क्योंकि सफ़र वही जो साथ में तय किया जाए और मंजिल वही जो दिल तक पहुंचे। अगला गीत आप ही के लिए, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: से तो फरमाना।
1: जब तैयारियां इतनी जोरों शोरों से है तो आना तो पड़ेगा ही। मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर, क्योंकि हाँ हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। वैसे ही आंखों आंखों वाली बातचीत भी कमाल की होती है ना। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा चेहरा है जिसकी पलकों के उठने और गिरने से आपकी सुबह और शाम होती है, तो ये अगला गीत उसी के लिए, अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में आप ही के लिए।

वैसे इश्क में ऐसा ही होता है, जब मोहब्बत मुकम्मल होती है तो फिर उस इंसान के सामने सारी कायनात फीकी लगने लगती है। कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन जब हमें किसी से बेइंतहा मोहब्बत होती है तो वही इंसान सबसे हसीन, सबसे मुकम्मल लगता है। अगर आप भी किसी की यादों से घिर आए हैं जिसके सामने चांद की रोशनी भी फीकी लगती है, तो ये अगला गीत उसी के नाम, अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, नए किरदार आने लग गए हैं। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:40 और 18 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप, और अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

0: आप जानते हैं मोहब्बत की आखिरी हद क्या होती है? मुझे लगता है कि आखिरी हद वो है जहां आप अपनी वजूद से ज्यादा सामने वाले की जिंदगी की दुआ करने लगते हैं। कहते हैं जब हम किसी से ऐसी शिद्दत वाली मोहब्बत करते हैं ना, तो अपनी सांसें भी उनकी अमानत बन जाती है।
1: मुकेश जी का नाम आते ही बहुत सी यादें भर आती हैं। मुकेश जी के साथ मेरे बहुत प्रोफेशनल रिलेशंस बहुत देर से नहीं थे, लेकिन इमोशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा थे। मुझे सिर्फ एक दुख है कि मैं उनको बहुत देर से मिला। इतने बड़े सिंगर, इतने महान कलाकार।

हम सभी अपनी जिंदगी में न जाने कितने ख्याल देखते हैं, सोचते हैं। उनमें से कुछ ख्याल पूरे होते हैं और कुछ अधूरे ही छूट जाते हैं, है ना। ख्याल एक ऐसा परिंदा होता है जो वक्त और फासलों की बंदिशों को नहीं मानता। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी ऐसे शख्स का इंतजार जरूर करते हैं जिसे मिलने के बाद लगता है कि सफर अब मुकम्मल हो गया। कोई ना कोई एक चेहरा ऐसा ज़रूर नज़र आता है या लगता है कि हाँ, ये वही चेहरा है जो मेरी अधूरी नज़्म के लिए मुकम्मल है।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे सुनेंगे आप समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला जारी है। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish B. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as a chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Mr. Modi said, India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size, but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai, jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें.
2: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a three-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius PM Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swastha Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampurna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. A sessions court in Maharashtra's Bhiwandi remanded the three accused arrested in the Maharashtra teacher eligibility test paper leak case to police custody till July 6. Investigators suspect the involvement of an interstate examination racket. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom, with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Minister said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. In Assam, the flood situation in Dhemaji has worsened following days of heavy rainfall in the district and neighbouring Arunachal Pradesh. The raging flood waters of the Seman River have washed away a portion of a crucial railway bridge, entirely cutting off rail connectivity in the area and bringing train services to a complete standstill. State Disaster Response Force is carrying out rescue operations in Ujjalpur village under the Dimao Panchayat, where the 60 stranded families are being evacuated. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma stated that the situation is being closely monitored. The India Meteorological Department has issued a red alert for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. The Met Department also predicted heatwave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh and Uttar Pradesh for today. And that is the end of this news bulletin.

100.8 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने एक ऐसा प्रोग्राम जहां इतिहास और स्मृतियों से संगीत हमें आवाज़ देता है। तो चलिए फिर इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं 1950 की कालजयी फिल्म के गीत से, जिसे आवाज़ दी है तलत महमूद और शमशाद बेगम ने।

मेरी नजर में मोहब्बत को अगर बयां करना हो तो शायद गाना यही होगा। अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज में 1950 की कालजई फिल्म बाबुल से ये गीत आपने सुना। संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे शकील बदायूनी। और अब अगला गीत रफी साहब और लता जी की आवाज में।

हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार और रोमांटिक फिल्मों में से एक। संगम से सुन रहे थे आप ये गीत रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में। संगीत शंकर जयकिशन साहब का और गीतकार थे हसरत जयपुरी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था राज कपूर साहब ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1964 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार ने। फिल्म संगम की कहानी तीन दोस्तों के यानी कि राज कपूर, वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म दोस्ती, प्रेम और त्याग को बहुत ही भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करती है। और अब अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता जी और मुकेश की आवाज़ में।

अभी आपने सुना फिल्म आस का पंछी से ये सदाबहार गीत मुकेश और लता के आवाज में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहन कुमार ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला ने। ये फिल्म जो है वो युवा के सपनों को लेकर, उसकी जिम्मेदारियों को लेकर, उसके संघर्ष को लेकर बनाई गई थी। और इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे थे यानी कि गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। और अगर हम हसरत जयपुरी साहब की बात करें तो वो हिंदी सिनेमा के उन गीतकारों में से एक रहे जिन्होंने अपनी सरल और सहज भाषा से हिंदी गीतों को लोकप्रियता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में फिल्म ब्लैक कैट से। संगीत है एन दत्ता का और गीतकार हैं जानिसार अख्तर साहब।

अॼु समुझे।

हो रहना किसी के।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और 6 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। गीत सुहाने एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें संगीत इतिहास और स्मृतियों से आवाज देता है। गीत अब तक पहुंच रहा है अगला फिल्म मधुमती से लता मंगेशकर की आवाज में।

1958 में आई फिल्म मधुमति से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत था सलील चौधरी का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था बिमल रॉय ने और कहानी लिखी थी ऋत्विक घटक ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी वैजयंती माला और दिलीप कुमार ने। सहायक भूमिका में नजर आए थे प्राण और जॉनी वॉकर। इस फिल्म की कहानी आनंद यानी कि दिलीप साहब के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे मधुमति यानी कि वैजयंती माला से प्यार हो जाता है और उनके संघर्ष को और चुनौती को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से और एक नए अंदाज में पेश किया गया है। और अब आप तक पहुंच रहा है अगला गीत।

फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं, और आवाज थी आशा जी और मुकेश की, संगीत खयाम का, और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म 1965 में आई थी, और अभी जो गीत आपको हमने सुनवाया वो गीत पिक्चराइज किया गया था शशि कपूर और नंदा पर। और अब अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से।

मुड़ मुड़ के देखना है और फिर से जुड़ना है 2:10 पर मेरे साथ। अभी वक्त है समाचारों का, आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ग्रीस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। हाफ टाइम के बाद भी दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास-पास नहीं, साथ-साथ चलें.
2: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a three-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's vision Mahasagar and neighborhood first policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swastha Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampurna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. In Assam, the flood situation in Dhemaji has worsened following days of heavy rainfall in the district and neighbouring Arunachal Pradesh. The raging flood waters of the Simon River have washed away a portion of a crucial railway bridge, entirely cutting off rail connectivity in the area and bringing train services to a complete standstill. State Disaster Response Forces carrying out rescue operations in Ujjalpur village under the Dimao Panchayat, where the 60 stranded families are being evacuated. CM Dr. Himanta Biswa Sarma stated that the situation is being closely monitored. In the FIH Hockey Pro League, Indian men's team defeated England 3-2 in the penalty shootout after a hard-fought 0-0 draw in the reverse fixture at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London. The win marked India's last FIH Hockey Pro League fixture before the Hockey World Cup, providing the team with a timely confidence boost ahead of the marquee tournament. The knockout stage of the FIFA World Cup begins with South Africa taking on Canada in the opening round of 32 match at Los Angeles in the United States. Following the conclusion of the group stage, 32 teams have advanced to the knockout phase. The India Meteorological Department has issued a red alert for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. The Met Department also predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh and Uttar Pradesh for today. And that is the end of this news bulletin.

हम मिलेंगे किसी न किसी दिन किसी मोड़ पर, हम मिलेंगे किसी न किसी दिन किसी मोड़ पर, जैसे दो रेखाएं मिलती हैं कभी न कभी। और अगर हम समांतर निकले तो मिलेंगे अनंत में, जहां ये झूठ हर रोज दोहराना ना पड़े कि मुझे तुमसे मोहब्बत है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:31। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी रात के सुरों पर बात, रात के दर्द पर बात, रात के की पीड़ा पर बात, रात के जज्बात को, रात के एहसास को कुछ गीतों और बातों से समझने की कोशिश। तो चलिए फिर इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार गीत के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

कुछ गाने सुनकर ऐसा लगता है ना कि इश्क की जुबान या फिर मोहब्बत की जुबान कभी पुरानी नहीं होती। चेहरे बदल जाते हैं पर एहसास वही रहता है। अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

गले। जब रफी साहब और आशा जी की आवाज एक साथ मिलती है तो मौसम और भमरे गुनगुना ही उठते हैं, और मुझे यकीन है कि इस गाने को सुनकर आपके चेहरे पर भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ ही गई होगी। बाहर मौसम चाहे जैसा हो पर एफएम गोल्ड का मौसम मस्ताना तो है। अगला गीत अभी के लिए।

इस गाने को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे काम छोड़कर मौसम को गले लगा लिया जाए, स्टूडियो से बाहर निकलकर मौसम के साथ एंजॉय किया जाए। लेकिन फिर याद आया कि अगर मैं चली गई तो इस मौसम में आपका साथ कौन निभाएगा। तो चलिए फिर आपके दिल का, आपके जज्बात का एहसास समझते हुए अगला गीत आप ही के लिए।

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। खुद ब खुद बेसाख्ता मैं हंस पड़ा, उसने इस दर्जा रुलाया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है ना साया देर तक। कल अंधेरी रात में मेरी तरह एक जुगनू जगमगाया देर तक, वो रुला के हंस न पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:42 और 10 सेकेंड। रात सुरमई महफिल का हसीन और यादगार सफर आप तय कर रहे हैं मेरे साथ। रात सुरमई, जहां हम रात के जज्बात को, रात के एहसास को, रात के दर्द को अपनी बातों से और गीतों से समझने की कोशिश करते हैं, बयां करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर अगला गीत सुना जाए। अगला गीत है शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

प्यार का इजहार अगर मुस्कुराते हुए किया जाए तो शायद उसकी जबान वही होगी जो इस गीत में थी। और अब सुनते हैं हम अगला गीत।

वैसे दुनिया छोड़ने की बात गानों में ही अच्छी लगती है और गानों में ही अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि असल जिंदगी में तो अपनों के साथ छोटी छोटी खुशियों में उनके साथ रहना ही असल जिंदगी की दौलत होती है। अपनों के साथ रहना, अपने जो अपने करीबी हैं उनके साथ रहना ही असली दौलत होती है। तो जिंदगी का साथ ऐसे ही निभाते रहना ही असली जिंदगी है। अगला गीत

हम सभी की जिंदगी में बहुत सी तमन्ना होती है, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, पर हर तमन्ना पूरी हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेवा। मुझे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस यात्रा के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किए। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। ग्रुप चरण के मुकाबले खत्म होने के बाद 32 टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इस चरण में 16 मैच खेले जाने हैं। भारत के स्टार शटलर किताम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को हराया। 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना फाइनल में चीनी ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू लिंग यांग से होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai. जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले.
2: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a three-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampurna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. Four traditional agricultural products from Madhya Pradesh have been granted the geographical identification, granted the geographical indication or GI tag. They are Sitahi Kutki, Nagadaman Kutki, Bengani Arhar and Kshatriya Dhan. The State Agriculture Department described the recognition as a major achievement for farmers. A sessions court in Maharashtra's Bhiwandi remanded the three accused arrested in the Maharashtra teacher eligibility test paper leak case to police custody till July 6th. Investigators suspect the involvement of an interstate examination racket. In Assam, the flood situation in Dhemaji has worsened following days of heavy rainfall in the district and neighbouring Arunachal Pradesh. The raging flood waters of the Saimen River have washed away a portion of a crucial railway bridge, entirely cutting off rail connectivity in the area and bringing train services to a complete standstill. State Disaster Response Force is carrying out rescue operations in Ujjalpur village under the Dhemau Panchayat, where the 60 stranded families are being evacuated. Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma stated that the situation is being closely monitored. India's Kidambi Srikanth advanced to the men's singles final of the US Open Badminton Championships at the Titan Gym in California. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semifinal yesterday. He will face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final this morning. In the FIH Hockey Pro League, Indian men's team defeated England 3-2 in the penalty shootout after a hard-fought 0-0 draw in the reverse fixture at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London. And that is the end of this news bulletin.
3: 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद और इंतजार में बहुत गहरा रिश्ता है। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें एक उम्मीद होती है कि इसका परिणाम कैसा होगा, और परिणाम अच्छा होगा या बुरा इसका इंतजार भी होता है। इंतजार का अपना एक अलग नशा है, जिसमें शिकवा भी है और एक अजीब सा सुकून भी। कुछ ऐसी ही बेचैनी, कुछ ऐसी ही दीवानगी लेकर जब कोई किसी के इंतजार में पलकें बिछाए बैठा होता है तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है। आइए महसूस करते हैं इस खूबसूरत एहसास को।

कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में फिल्म दीवाना से अभी आपने गीत सुना। सुना है वादे अक्सर टूट जाया करते हैं, सुना है वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और निभाने वाले अक्सर रूठ जाया करते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने वादा किया हो और वो टूट गया हो?

कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में फिल्म दिल का क्या कसूर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, कुछ नजरें ऐसी होती हैं जो बिना कोई लफ्ज कहे सीधे रूह में उतर जाती हैं, और तब जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कहीं इस सादगी पर हम अपना दिल ना हार बैठें।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म चमत्कार से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म हीरो से अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में।

हंसते हुए दिल को पल में रुला देती है, हंसते हुए दिल को पल में रुला देती है, सोई हुई तकदीर को पल में जगा देती है। मत पूछो कि ये मोहब्बत क्या चीज है यार, अच्छे अच्छों को ये सीधे रास्ते से भटका देती है। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में फिल्म सनम से ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों कहते हैं कि प्यार में थोड़ा सा इंतजार उस प्यार की मिठास को और बढ़ा देता है। जब एक हमसफर दूसरे से कहता है कि एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, तो वो लम्हा इतिहास बन जाता है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कयामत से कयामत तक अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 1,00,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बन रहा 1,400 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उत्तरी और पश्चिमी भारत के बीच संपर्क को काफी आसान बनाएगा और देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगा। एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई खंड की प्रगति की समीक्षा के बाद श्री फडणवीस ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई यात्रा के समय को 8 घंटे से घटाकर लगभग 4 घंटे कर देगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले की तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें.
2: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a three-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's vision Mahasagar and neighborhood first policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The minister also released the operational guidelines for the Anemia Mukt Bharat Abhiyan at the same conference. The launch will mark a significant milestone in India's fight against anemia as the program transitions from Anemia Mukt Bharat to Anemia Mukt Bharat Abhiyan. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. In Assam, the flood situation in Dhemaji has worsened following days of heavy rainfall in the district and neighboring Arunachal Pradesh. The raging flood waters of the Simen River have washed away a portion of a crucial railway bridge, entirely cutting off rail connectivity in the area and bringing train services to a complete standstill. State Disaster Response Force is carrying out rescue operations in Ujjalpur village under the Dimau Panchayat, where the 60 stranded families are being evacuated. CM Dr. Hemanta Biswa Sarma stated that the situation is being closely monitored. The India Meteorological Department has issued a red alert for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. The Met Department also predicted high heat wave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh and Uttar Pradesh for today. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. In badminton, star Indian shuttler Kidambi Srikanth advanced to the men's singles final of US Open 2026, beating Yudai Okimoto of Japan in the semifinal in California. The former world number one will face Chinese Taipei's 8 seed Su Li Yang in the final today. And that is the end of this news bulletin.

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम के साथ आज मैं हाजिर हूं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। रात का अंधेरा थमा तो एक नई किरण मुस्कुराई है। रात का अंधेरा थमा तो एक नई किरण मुस्कुराई है। देखो धीरे धीरे ही सही पर एक खूबसूरत सुबह आई है। मिट गए सब शिकवे गिले, सब धुंध छंट गई। जिंदगी फिर से नए हौसलों के साथ मुस्कुराई है।

येसुदास की आवाज में फिल्म हैसियत से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी पल पल पर हमारा इम्तिहान लेती है, कभी किसी मोड़ पर तो कभी किसी मोड़ पर। उसी में से हमने ये देखना होता है कि किस तरह हर एक परीक्षा में हमें सफल होना है।

कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म नसीब से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, एक चुप सो सुख, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी और ये सही भी है, क्योंकि हर बात का जवाब देने से अच्छा है कि चुप रहा जाए। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सौतन की बेटी से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म मन से, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में।

दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि किसी खुशमिजाज व्यक्ति को कभी आप देखो तो आपके चेहरे पर भी अपने आप ही खुशी आ जाती होगी। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में वक्त फिल्म से ये गीत।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम रोग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आगे पीछे दाएं बाएं अच्छे से देख कर चलें। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म जोकर से ये गीत।

में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

के जे येसुदास की आवाज में फिल्म चितचोर से आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्ध पोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। सोशल मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। भारत के किदांबी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के योदाई ओकीमोतो को हराया। फाइनल मुकाबले में 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना चीनी ताइपे के सू ली यांग से हो रहा है। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण के पहले मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of Independence Day of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian PM to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajhedari aakar nahi aapasi samman aur vishwas par aadharit ho aur jahan hum har desh ke पास-पास नहीं, साथ-साथ चलें.
2: Prime Minister Narendra Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. He dedicated the award to the nation's fighting against the challenge of climate change and considers environmental protection their responsibility towards future generations. PM Modi met his Mauritius counterpart Dr. Naveen Chandra Ramgoolam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. PM Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First Policy and their shared commitment to the Global South. A sessions court in Bhiwandi has remanded the three accused arrested in Maharashtra teacher eligibility test paper leak case to police custody till July 6th. Investigators suspect the involvement of an interstate examination racket. The three accused held in connection with the Maharashtra teacher eligibility test or paper leak case were remanded to police custody till July 6th by Bhiwandi Sessions Court on Sunday. Bhiwandi police told the court that the accused had allegedly travelled from Delhi to Bhiwandi to sell the leaked question paper for 1 crore 50 lakh rupees. Investigators had sought 10 days of police custody to trace the source of the leaked paper, examine financial transactions, find out whether the paper was sold elsewhere in Maharashtra, and identify other members of the racket. Police officials said the probe has revealed the involvement of an interstate and national level network. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The minister will also release the operational guidelines for the Anemia Mukt Bharat Abhiyan at the same conference. The launch will mark a significant milestone in India's fight against anemia as the program transitions from Anemia Mukt Bharat to Anemia Mukt Bharat Abhiyan. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. In the FIH Hockey Pro League, Indian men's team defeated England 3-2 in the penalty shootout after a hard-fought 0-0 draw in the reverse fixture at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London. And that is the end of this news bulletin.
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11:10 हुए हैं। सुबह की इस प्यारी बेला में भोर सुहानी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, आपके सब काम पूर्ण हो जाते हैं अगर उस प्रभु पर विश्वास हो। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है विक्रांत माथुर ने।